और मत तुसन अगले वजब तुना खाए खसमें करे बराबरी फिर गैर तंदर पाए वजब गुआए अगला मवे पाना खाए जिसका दिता खावना तिस कही है साहबास नाल घूमना चले नाल खसम चलै अरदास नाल खसम चलै अरदास।

शिव जीओ, आप जी दे पावन पवित्र अस्थान सचखंड श्री हरमंदर साहिब जी विखे। धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज।

एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरभाओ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद चक्र चिहन अर वरन जात अर पात नहिं जेह रूप रंग अर रेख पेख को कह ना सकत केह अचल मूरत अनभव प्रकाश अमितोज कहिजै कोट इंद्र इंद्राण साहे सहान गणिजै त्रिपवन महीप सुर नारे असुर नेत नेत बन तृण कहत त्वय सर्व नाम कथा कवना कर्म नाम वर्णत सुमत ज्योत रूप हर आप गुरु नानक कहाया ताते अंगद पायो तत स्यों तत मिलायो अंगद कृपा तार अमर सतगुर थिर कियो अमरदास अमरत छत्र गुर राम है दियो गुर राम दास दर्शन परस कह मथुरा अमृत बैना मूरत पंच परमान पुरख गुर अर्जुन पिखो नैन हौ अपराधी गुनहगार हौ वे मुख मंदा चोर जार जुआर हौ पर कर जो हंदा निंदक दुष्ट हराम खोर ठग देस ठगंदा काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार करंदा विश्वास घाती अकृत कान मैं को ना रखंदा सिमर मुरीदा ढाडिया सतगुर वखसंदा असीखते बहुत कमाव दे अंत न पारावार हर कृपा कर कै बखस लो हौ पापी वड गुन है गार लिख कतहे न छूटिया खिन खिन पूलन हार वखस नहार वखस ले नानक पार उतार एक उत्तम पंथ सुनयो गुर संगत तेह मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की
गुर रामदास रखहु सरनाई, अंदर सच्चा नेहु, लाया प्रीतम आपना, तन मन हुए निहाल। जा गुर देखा सामने, सुकहो टल गुर सेविया, अहनस सहज सुवाए, दर्शन परसया गुरु का, जन्म मरण दुख जाय, होवै सिफत खसम दी, नूर अरसह कुरसह चटिया, तुद डिठे सच्चे पाते सा, माल जन्म जन्म दी कटिया, सज्जन सच्चा पाते साहु, सिर साहा दैसा, जिस पास बैठे आसोहिया, सबना दा वेसाहु, सज्जन सच्चा पाते साहु, सिर साहा दैसा।

0: अंदर जियो सब कुछ जान लो सब कुछ तेरे वास तेरा कर पला तेरे घर नंद वधाई तुद कर मान महता तेरा अपना आप जर सर्व कला भरपूर दिसनत कथा नानक दास संदास
1: श्लोक पवन गुरु पान पिता माता धरत महत दिवस रात दाई दाया खेल सग जगत।

बिन भगती नहीं सतगुर पाई, बिन पगा नहीं भगत हरी, बिन भगती नहीं सतगुर पाई।

दुखदार श्लोक पया जास कुताम न होई, तू करता करना मैं नाही जाहु करी न होई, बलहारी कुदरत बसया तेरा अंत न जाई लख्या रहा, जात मह जोत जोत मह जाता अकल कला भरपूर रहया, तू सच्चा साहिब सिफत सवालियो जिन कीती सो पार पया, कहो नानक करते किया बाता जो किश करना।

राग आसा महला चौथा सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगम अगम अपार सब त्याव है सब त्याव है तुद जी हर सच्चे सिरजनहार सब जी तुम्हारे जी तू जियां का दातार हर त्याव हो संत हो जी सब दुख विसारण हार हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचार तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी हर एको पुरख समान एक दाते एक भेखारी जी सब तेरे चोज बिडाण तू आपे दाता आपे भुगता जी हों तुद बिन अवर न जान तू पार ब्रह्म।

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतह। पातशाही दसवीं कवियो बाच बेनती चौपई। हमरी करो हाथ द रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा। तब चरणन मन रह हमारा, अपना जान करो प्रतपार। हमरे दुष्ट सवै तुम काव हो, आप हाथ दे मोहे बचाव हो। सुखी वसै मो

दुष्ट दुख तिल हो बचाई। सवैया पाए गहे जब ते तुमरे, तब ते को आँख तरे नहीं आने। ओम राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कहे मत एक न माने। ओम सिमरत शास्त्र वेद सब है, बहु भेद कहे हम एक न जाने। ओम श्री असपान कृपा तुमरी कर, मैं न कहे। ओम

राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर तां पाया सहज सेती मन बजियां बाधाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावन आईयां शब्दो तां गावहो हरि केरा मन जिनी वसाया कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब बेसारण अंगीकार ओह करे तेरा कारज सब सवारण सवना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मनहु बसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिबा क्या नाहीं घर तेरै घर तां तेरै सब किश है जिस देहे सो पावै सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन बसावै नाम जिनकै मन वसिया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नाहीं घर तेरै साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विट हो जिस दियाँ इह वडियाइया कह नानक सुनहो संत हो शब्द धरहो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो बाजे पंच शब्द तित घर सुभागै घर सुभागै शब्द बाजे कला जित घर धारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया तुर कर्म पाया तुद जिन कौ से नाम हर कै लागे कह नानक तह सुख होआ तित घर।

चेट आवन का सदका सर्ब सुख होवै। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रक्षिया रियायत। देग तेग फतेह बिरदगी बैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाए। खालसे जी के बोल बाले बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी। सिखा नु सिखी दान के सुदान रहत दान। बाबेक दान साह दान भरोसा दान दाना सरदार नाम दान। श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान। चौंकियां झंडे बूंगे जुगो जोगी अटल।

हम सर दीन दयाल न तुम सर, आप पति यार क्या कीजे, बचनी तोर मोर मन माने, जान खो पूरन दीजे। हों बल बल जाओ रमैया कारने, कारण कवन अबोल, बहुत जन्म बिछुरे थे माधव, एहो जन्म तुम्हारे लेखे, कह रविदास आस लग जीव, चेर पयो दर्शन देखे। फिरत फिरत प्रभ आय, परया तो शरणाय, नानक की प्रभ बेनती, अपनी भगती लाए। मैं मूर्ख की केतक बात है, कोट पराधी तरिया रे, गुर नानक जिन सुनया पेखिया, से फिर गर्वास ना परया रे। बाणी गुरु गुरु है बाणी, बिच बाणी अमृत सारे, गुर बाणी कह सेवक जन माने, पर तख गुरु निस्तारे। दर्शन प्यासी दिन सुरात, चित बहु अन दिन नीत,

काची गागर नीर परत है, या तन की एह बड़ाई। काहे भइया फिर तो फूलिया फूलिया, जाव दस मास उर्द मुख रहता, सो दिन कैसे भूलिया। रहाओ ज्यों मधमाखी त्यों सठोर रस, जोर जोर तन किया। मरती बार लेहो करिए, भूत रहन क्यों दिया। देहुरी लौ बरी नार संग पई, आगे सजन सोहेला। मार घट लौ सब लोग कुटुंब पयो, आगे हंस अकेला। कहत कबीर सुनहो रे प्राणी, परे काल ग्रस कुआ। झूठी माया आप बंधाया,

0: पौड़ी पड़ी हूँ बटाया पार तेरा मृतबा रंग प्रंग अनेक ना जपन कर तबा निंद्र जियो सब कि जान ला सब किस तेरा बस तेरा कर भला तेरा कर आनंद वधाई तुत कर पान महता ते अपना पजर सब कला भरपूर जगता नानक दसन दास सुधिया गै बिनवता।
1: ਸਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਤਖਤ ਮਹਾਦੇਵ ਸਰਾ।

हम अवगुण परे एक गुण नाही, अमृत शाड बिख बिख खाई, माया मोह परम पै भूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर राम दास राख हो सरनाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर राम दास राख हो सरनाई। सो कहो टल गुर सेविया, अहनस सहज दर्शन परसिया गुरु का, जन्म मरण दुख जाए। ओ सिफत खसामी नूर अरसों कुरसों चटी, तुद डिठे सच्चे पात सहा, मल जन्म जन्म दी। सजन सचा पात साहो सिर सांद, जिस पास बैठियां सोही, सबनां दा वेसा। सजन सचा पात साहो सिर सांद, जिस पास बैठियां सोही, सबनां दा वेसाहो। सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी। सोरठ एक ओंकार, सतगुर प्रसाद, बहु परपंच कर पर तन लियावै।

छेन छेन तन चीज जरा जनाव तब तेरी ओक कोई पानियो न पावे कहत कबीर कोई नहीं तेरा हृदय राम की ना जप है सवेरा कहत कबीर कोई नहीं तेरा हृदय राम की ना जप है सवेरा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सिर मस्तक रखिया पार हस्तकाया रखिया परमेश्वर है आत्मा रखिया गोपाल स्वामी धन चरण रखिया जगदीश है सर्व रखिया गुरदयाल है भय दुख विनाशन है भगत बछल अनाथ नाथे सरन नानक पुरख चुत है। बिलावल महला पंजवा ताती बौन लगई पार बिम सरनाई चौगिर्द हमारे रामकार दुख लगे न पाई सतगुर पूरा भेटिया जिन बंत बनाई राम नाम औखत दिया एका लिवलाई रहाओ राख लिए तन रखन हार सा ब्याद मिटाई कहो नान कृपा पई प्रभु पे सहाई। सोहे लारा गौड़ी दीप की महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद जय कर कीर्त आखिया करते का हुई विचारो चित कर गावो सोहेला सिवरो सृजनहारो तुम गावो मेरे निरभउ का सोहेला हों बारी जित सोहेला सदा सुख होए रहाओ नित नित जीअड़े संभालिन देखेगा देवनहार तेरे दाने कीमत ना पवै तसदा ते कवन संवार संबत सहा लिखिया मिल कर पावो तेल जिहो सजन सीसड़िया जे होवै सहब स्यो मेल कर कर एहो पहुंचा सदड़े नित पवन सदन हर सिमरिया नानक से दयावन रागासा महला पहला छे घर छे गुर छे उपदेश गुरु गुरु एको बेस अनेक बाबा जय कर करते कीर्त होए सो कर रख बड़ाई तोए रहाओ जिस विच सिया घड़ियां पहरा थिती वारी माहो हुआ सूरज को रुत अनेक नानक करते के बेस राग तनासरी महला पहला गगन में थाल रव चंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती तूप माले आन लो पवन चवरो करे सगल बंदराए फूलंत ज्योति ऐसी आरती होए पव खन्ना तेरी आरती अनाता शब्द बाजंत फेरी रहाओ सहस्ताव नैन नन नैन है तोहे को सहस मूर्त नायक तोहे सहस पाद विमल नान एक पाद गंध विन सहस तब गंध विचलत मोही सामे जोत जोत है सोए तिस दे चानन सामे चरण होए गुरसाखी
ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਜੋਤ ਸੁਭਾਵੈ ਸੋ ਆਰਤੀ ਹੋਏ। ਹਰ ਚਰਨ ਕਾਬਲ ਮਕਰੰਦ ਲੋਭਤ ਮਨੋ ਅੰਦਨੋ ਮੋਹਿਆ ਹੀ ਪਿਆਸਾ। ਕਿਰਪਾ ਜਲ ਦੇ ਨਾਨਕ ਸਾਰ, ਕੋਈ ਜਾਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਏ ਵਾਸਾ। ਰਾਹ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਗਰ ਭਰਿਆ, ਮਨ ਸਾਧੂ ਖੰਡਲ ਖੰਡਾ ਹੈ। ਪੂਰਬ ਲਿਖਤ ਲਿਖੇ ਗੁਰ ਪਾਇਆ, ਮਨ ਹਾਰਲੇ ਮੰਡਲ ਮੰਡਾ ਹੈ। ਕਰ ਸਾਧੂ ਅੰਜਲੀ ਪੁਨ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਰ ਡੰਡੌਤ ਪੁਨ ਵੱਡਾ ਹੈ ਰਹਾਓ। ਸਾਕਤ ਹਰ ਰਸ ਸਾਧਨਾ ਜਾਣਿਆ, ਦਨੰਤਰ ਹਮੈ ਕੰਡਾ ਹੈ। ਜਿਉ ਜਿਉ ਚਲੈ ਚੁਵੈ ਦੁਖ ਪਾਵ ਹੈ, ਜਮ ਕਾਲ ਸਹੈ ਸਿਰਡੰਡਾ ਹੈ। ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਣੇ, ਦੁਖ ਜਨ ਮਰਨ ਪਵ ਖੰਡਾ ਹੈ। ਵਿਨਾਸੀ ਪੁਰਖ ਪਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਵਹੁ ਸੋਭ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾ ਹੈ। ਹਮ ਗਰੀਬ ਮਸਕੀਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ, ਹਰ ਰਾਖ ਰਾਖ ਬੜ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦਰ ਟੇਕ ਹੈ, ਹਰ ਨਾਮ ਹੀ ਸੁਖੁੰਡਾ ਹੈ। ਰਾਹ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਸੰਤ ਹੈ ਲਿਖੀ ਵੇਲਾ। ਇਹਾਂ ਖਾਟ ਚਲੋ ਹਰ ਲਹਾ, ਗੈ ਬਸਨ ਸਹੇਲਾ। ਔਦ ਘਟੈ ਦਿਨ ਸਰੈਣਾ ਰੇ, ਮਨ ਗੁਰਮਿਲ ਕਾ ਸਵਾਰੇ ਰਹਾਉ। ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿਕਾਰ ਸੰਸੇ, ਮੈਂ ਕਰਿਓ ਬਹਿਮ ਗਿਆਨੀ। ਜਿਸੇ ਜਗਾਏ ਪੀਆ ਵਹਿ ਰਸ, ਕਥ ਕਥਾ ਤਿਨ ਜਾਨੀ। ਜਾ ਕੋ ਆਏ ਸੋਈ ਵਿਹਾਜ, ਹੋ ਹਰ ਗੁਰ ਤੇ ਮਨੇ ਬਸੇਰਾ। ਨਿਜ ਕਰ ਮਹਿਲ ਪਾਓ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ, ਬਹੁਰ ਨਾ ਹੋਏ ਗੋ ਫੇਰਾ।

0: दुख गवायो, जो चाहत सोई मन पायो, कर कृपा हर नाम दिवायो। सर्ब सुख हर नाम बढ़ाई, गुर प्रसाद नानक मत पाई।
1: श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत, दिवस रात दोए दाई दाया खेलै सगल जगत, चंगियाईयां बुरे

0: जन्म गवाया जन्म गवाया जन्म
1: पौड़िया पिने भोग पोके होए पसमण पौर सुधाया वड्डा हुआ दुनीदार गाल संगल कत चलाया अग्ञा करनी कीर्त वाचिया बह लेखा कर समझाया ठाव ना हो वही पौदई हूं सुनया क्या रवाया माने अंधे जन्म।

मुसलमाना सिर्फ सदियत पढ़ पढ़ करे विचार बंदे से जे पे विच बंदी वेखन को दीदार हिंदू साला ही साला हन दर्शन रूप पार तीर्थ नावे अर्चा पूजा अग्रवास बेकार जोगी सुनत्या बन जेते लख नाम करतार सुख मूर्त नाम रंजन काया काया कार सतिया मन संतो गुप्जे देने के विचार दे दे मंगे सहसा गुना सो परे संसार चोरा यारा ते कुड़िया रखा रब्बा बेकार एक होंदा का चले ताओ तिना बिकाई कार जल था जिया पुरिया लोहा या कार आया कार ओ जा के सो तू है जाने तिना भी तेरी सार नान पगता पुक सलाह।

0: पहला पड़पड़ गड्डी लदिए पड़पड़ भरिए साथ पड़पड़ बेड़ी पाइए पड़पड़ गड्डिए खात पढ़िए जेते बरस बरस पढ़िए जेते बास पढ़िए जेती आरजा पढ़िए जेते सास नानक देखे एक गल होर होमे चखना चा
1: पहला लिख लिख पढ़िया तेता करिया बहुत तीर्थ भव्या तेतो लव्या बहुत भेख किया देही दुख दिया सौवे जी अपना किया अन्न ना खाया साध गवाया बहुत दुख पाया दूजा पाया वस्त्र ना पहरे एनस कहरे मोहन विगुता क्यों जागया गुरबिन सूता पग पे धाना अपना किया कमाणा अलमल खाई सिरशाई पाई मूर्ख अंधे पद गवाई बिना में किस्ताई न पाई रहे बवाणी मड़ी मसाणी अंध न जाने फिर पछताणी सतगुर भेटे सो सुख पाए हर का नाम मन वसाए नानक नदर करे सो पाए आस अंधे से तेने केवल हों में शब्द जलाए पौड़ी भगत रे मन भाव दे दर सोहण कीरत गाम दे नानक कर महारे दर ढोला लैणी ताम दे कमू लभजन अपना।

कूड राजा कूड प्रजा कूड सब संसार कूड मंडप कूड माई कूड बैसनहार कूड सोना कूड रूपा कूड पहनहार कूड काया कूड कपड़ कूड रूपा पार कूड़ मियाँ कूड बीबी खप होए खार कूड़ कूड़े ने कहे उन्होंने गा विसरा करतार कृष्णार की चय दोस्ती सब

सच काल कूड़ वर्त्या कल काल बेताल बियो बिज पद लै गया क्यों बेताल जे कहो तो कबरती हुरत होए नानक पाहे बारा कोरे रंगना सोए पैविच घुम चढ़ाइए सरम पतन होए नानक।

0: महला पहला दुखदार उस रोग प्या जा सुकताम ना होई तू करता करना मैं नाही जाहो करी ना होई बलिहारी कुदरत वस्या तेरा अंत ना जाई लख्या रहाओ जात में जो जोत में जाता कलकला प्रभु रहा तू सच्चा साहब सुब सवाले हो जिनकी ती सो पार पया कहो नानक करते की बाता जो कुछ करना सो कर रहा
1: जोग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मण है खत्री शब्दं सूर शब्दं सूदर शब्दं पुरा करता है सर्व शब्दं एक शब्दं जे को जाने पेव नानक ताका दास है सोई निरंजन देव महला दूजा एक कृष्णं सर्वदेवा देव देवता आत्मा आत्मा बास देवस जे को जाने भेव नानक ताका दास है सोई निरंजन देव महला पहला
0: कुंभे बद्दा जर रहे जर बिन कुंभ ना होए ज्ञान का बद्दा मन रहे
1: गुर बिन ज्ञान ना हो।

0: श्लोक महला पहला नानक में शरीर का एक रति कृतवा हो जुग जुग फेर उठाइए ज्ञानी पूजता है साधु रस्त होगा धर्म गिरथवा हो तेरे तेरा जतेगा जोर गिरथवा हो द्वापरा तपेगा सत गिरथवा हो काल जुगरा थगन का कूड गैर सुभाव महला पहला
1: साम कहे स्तंभ स्वामी सच में अच्छे साज रहे सबको सच समाव है रे कर प्रभु राम नाम देवा मैं सूर नय ले प्रात जाए नान तो मखंतर बा जुज में जो चली चंद्रावल कान कसंग आदम भया वार जात को पीले आया बिंद्रा बन में रंग किया कल में भेद अथर्वण हुआ नाम खुदाई अलो भया नील वसले कपड़े पैरे तुर्क पठानी अमल किया चारे वेद होए सत्यार पड़े गुणे दिन जान विचार हाउ भगत कार नीच सदाए कहो नानक मुखांतर भाए बोली सतगुरु टुवारिया जित मिले खसम संभालिया जिनकार विदेश ज्ञान अंजन दिया इन नेतरी जगत निहालिया कदम छोड़ दूजे लगे
0: से बन जा रहा

0: चित चित मो अरदास कहूं पर कह भी न सकूं, सर्व चिन तुझ पास सात संगत हो तको, तेरे हुक्म पवे निशान तो करो साहब की सेवा, जब गुर देखे शुभ दिस नाम करता मुख मेवा, अगम अलख कारण पुरख जो फरमावे सो कहूं, गुरु अमरदास कारण करण जीव तो रख तिव
1: तिखे गे गुरु ज्ञान और ध्यान तत् स्यों तत् मिलावै, सच सच जानिए एक चित्ते लिवलावै, काम क्रोध वस करे पवन उड़ंत न तावै, निरंकार के बसे देश हुक्म बूझ विचार पावै, कल मैं रूप करता पुरख सो जाने

0: सबको निवे आपको पर को निवे ना कोए तरत राजू तो लीजे निवे सुगोरा होए अपराधी दूना निवे जो हंता मिर्गा है शीश नवाए क्या थी है जारी दे कसुदे जाहे
1: बड़ पुस्तक संध्या बादंग सिल पूजिस बगल समादंग मुख चूड़ विभुखन सारंग त्रैपाल तिहाल विचारंग गलमाला तिलक लाटंग दो धोती वस्त्र बाटंग जय जानस ब्रह्म करमंग सब होकर निश्चौ करमंग कहो नानक नहचौ तिहावै

बोलो जी वाहे गुरु। एक ओंकार वाहे गुरु जी की फातह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाह दसवीं प्रथम भगवती स्मर कै गुर नानक लाई ते आय। फिर अंगद गुर ते मरदास राम दास हुई सहाय। हर जन हर गोबिंद नो सिमराओ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरे घर नौ निधि आवै ताए। सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी। सब थाई हुए सहाय दसां पातशाहियां दी जोत। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान तर के बोलो जी वाहे गुरु। बोलो जी पंजां प्यारियां चौहां साहिब जादियां चालियां मुकतियां हठियां जपियां तपियां। जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया देग चलाई। तेग वाही देख के अण डिठ कीता तिन्हां प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान तर के।

साई भवे दयाल कृपा करे ता साई कार कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसनो हुक्म बनाए सी हुक्म न होवे प्रवान ता खसमे का महल पाए सी खसमे पावे सो करे मनो चिंदिया सो फल पाए सी।

हला पहला गौ ब्राह्मण को करलावो गोबर तरना जाई स्तोती टिका ते जो माली तान मलेशा खाई अंतर पूजा पड़क ते बासन जम दुर्गा पाई छोटी ले पखंडा नाम लिया जाए तरंदा महला पहला।

0: आवे बार बार झूठे झूठा मुखो सह नित नित हो एक बार सूचे ना की बहन जबिंडा तो सूचे से ही नानका जिन मन वस्या सोए पौड़ी तरे फलाने पाउण वे
1: हर रंगी हर मुसवारिया।

0: सब कोए। सुत क्यों कर रखिए सुत पैर सोए, नान सुत के नौ तुरे ज्ञान उतारे तोए महला पेला।
1: मन का सुतक लोभ है जेवा सुत कूड़, अखी सुतक वेखना पर त्रया पर धन रूप, कनी सुत कन पहला इतबारी खाहे, नानक हंसा आदमी मदे जम पर जाहे।
0: महला पहला सबो सुत परम है तुझे लगे जाए, जमन मरना हुक्म है।

सुचे अगे रखियो हुन कोई ना पिटियो जाए सुचा हो के जे ब्या लगापन सलोक को हथी जाई सटिया कि सो लगा दोख अन देवता पानी देव।